आदरणीय तरंगा दुरिंगिद्दिम हमें रखवागे दानो ना लंगट आवाम मनुष्य आत्रु दान दूर में हिट नांग हो दाई के लाही तेन्ने ऐतो कुटे थमाए है बैलागे मत यागे न पुलो आना हरी मासाई पानी विदेन हिर नामिकाए

दूर जाओगे जो तुम मर जाएंगे हम दुर्घट गियत मिया देवी मां सनम तेरे कसम प्रिय ओब पल्ला माटो बना दी जीवित अग्ना